0: पाइना मेडिकल हल भुरीगाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना
1: यही असोज 24 गते शनिबारको दिन
0: बिहान 10 बजेदेखि पाइना मेडिकल हल भुरीगाउँमा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्।
1: यही असोज 24 गते शनिबारको दिन
0: दिइने सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4-5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान, पाठेघरको जाँच, लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-442-55-909 र 98-442-97-517।
2: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी खारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई आदरणीय दादु भैया दिदी बहिनी हुक्र यही कुवार महिना के 25 गते अटवार के दिन 16 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका तीन जुटपानी बगनहा हाट बजार मिनाहिलक कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यह कुवात 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्भर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारूंग की प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादू भैया दीदी बहने हुकर यह कुंवर महीना के 25 गते अटवार के दिन सोरौ जुरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में और ठाकुर बाबा बरभर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका तीन जुटपानी बगनहा हाट बजार में हुईना हुई पहुंचे कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: हार्दिक आमन्त्रण वेशभूषा भाषा संस्कृति संरक्षण औ प्रवर्धन गरी थारूनकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति जगाए विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में आयोजना होने 16 जीवरा धरना तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में यहां को उपस्थिति का लागि हार्दिक आमंत्रण गर्दछौ। जीवरा धरना कार्यक्रम संचालन होने मिति यही असोज 25 गते आईतवार। स्थान ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नंबर 3 जुड़पानी बगना बजार बर्दिया। आयोजक ठाकुर बाबा बर्गर सञ्जाल समिति बर्दिया।
1: यो हो तपाईको आफ्नै रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारूंग की प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादू भैया दीदी बहना हुक्र यही कुंवर महीना के 25 गते अटवार के दिन सोरौ जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हुईना हुई कार्यक्रम में सहभागिता के लाभ मई गर अर्जी कर।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवार 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: यो हो तपाईँको आफ्नै रेडियो, रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।
1: साइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना।
2: यी असोज 24 गते शनिबारको दिन
1: बिहान 10 बजेदेखि साइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्।
2: यी असोज 24 गते शनिबारको दिन
1: दिइने सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4 देखि 5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान, पाठ्यघरको जाँच, लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 442 55 909 र 98 442 97 517।
3: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी खारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादु भैया दिदी बहिनी हुक्र यही पौर महिना के 25 गते अटवार के दिन 16 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिनाहिलक हो कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना रिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्फ सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: हार्दिक आमन्त्रण। वेशभूषा, भाषा, संस्कृति संरक्षण और प्रवर्धन करी थारून के प्राचीन मौलिक कला संस्कृति जगाए। विजयदशमी तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में आयोजना होने 16 जीवरा धरना तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में यहां को उपस्थिति का लागि हार्दिक आमंत्रण गर्दछौं। जीवरा धरना कार्यक्रम संचालन होने मिति यही असोज 25 गते आईतवार। स्थान ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नंबर 3 जुड़पानी बगना बजार बर्दिया। आयोजक ठाकुर बाबा बर्गर सञ्जाल समिति बर्दिया।
1: से भन्दा बढी एचडी र एसजीटीभी च्यानलहरू वाईफाई 6 सहितको सुपर फास्ट।
2: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज। गर्जन छ सधैँ बाघ झैं।
3: पान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएम।
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज। गर्जन छ सधैँ बाघ झैं।